हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु वंदन आराधन का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मार्ग तुम्हारे लिए मैंने खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ो।

बिखर कर आपके चरणों में निखर जाऊं, आप थाम लो हाथ मेरा और हम सवर जाएं प्रभु, बस इतनी कृपा रखना आपकी भक्ति में डूबू और भव सागर से तर जाऊं। कार्यक्रम वंदना से आज मैं थी आंचल, दीजिए इजाजत।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब नजर डालते हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम खेती में आज आप सुनेंगे 6:50 पर। सदाबहार नगमों का समय रहेगा सवेरे 7:00 और 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सवेरे 8:00 का समय रहेगा समाचार प्रभात का और मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे आकाशवाणी जयपुर से। 9:10 से आप पुनः सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे 9:30 पर और शीर्षक संगीत से सजा फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सवेरे 10 बजे।

सवेरे 11 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 11:30 पर। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप फिर

से सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे। माताएं और महिलाएं सुनेगी उनका अपना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी दोपहर 1:05 पर। 1:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत और साथ ही विकास चर्चा में होगी स्वदेश दर्शन पर बात। दोपहर समाचार का समय रहेगा 2:15। किसान भाई सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम कृषि जगत 2:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे 3:00 आकाशवाणी दिल्ली से। तो ये थी हमारी प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी संध्याकालीन सभा का आगाज होगा 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ। 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 6:05 पर और हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 पर और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

शाम 7 बजे से आप सुनेंगे आईसीसी वीमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का। भारत और बांग्लादेश के बीच मैनचेस्टर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण मैच समाप्ति तक। रात्रि 11 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का। अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे 11:05 पर, और इसी के साथ 11:10 पर हमारी संध्याकालीन सभा का समापन होगा।

तो ये थी हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का। 119 119

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुलदेवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुलदेवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्रीराम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती में, आज प्रस्तुति है पंकज वैष्णव की।
1: राम राम किसान भाई, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाई, अपना कार्यक्रम में टेम भी और मुँह आयो अपना घनी सारी जानकारी देवर वास्ते। तो जून महीना रहा मतलब बाणु की जो टेम चल रही है, ई टेम पे अपने खेती बाड़ी को जो काम काज कई वेवे वरना आपकी कितर करना चाहवा इकी जानकारी देवा। तो इमें देखो कि फल उत्पादन आपकी करा हाँ विकी जानकारी देवा, बागवानी संबंधी काम जो आपकी करा वो भी की भी जानकारी देवा, सब्जी है या पचे फूल को उत्पादन करवा वाला किसान भाई है वनार वास्ते या जानकारी है। और देखो ये जून महीना चाली रो है तो अणी महीना रे महीना आपकी जो काम करना चाहवा विकी बड़ी सावधानी रखवारी जरूरत पड़े है। कहाँ की देखो बाणूरी टेम जो है गर्मी को मौसम भी चल रही है और लारा लारा वर्का हवा की टेम भी चल रही है। तो अणी बदलता दिखा मौसम में खेती बाड़ी में जितना भी काम काज करा हाँ तो वन में काम काज में कई सारी सावधानी की जरूरत पड़े है। और आपकी जो बुआई करा हाँ तो बुआई की टेम पे कुछ बातों को अपने ध्यान रखना पड़े। कसी भी फसल आपकी करा तो वन में देखो बीज को उपचार वेगियो या पचे बीज की मात्रा कतरी लेनी, कीटनाशक रो इस्तेमाल कतरो करनो है, रोग जो लाग जाओ वणियो निदान अपन कणी तरह पाणो है। तो ये सब बातों की जानकारी अपने वेणी चाहे क्योंकि देखो वर्कार मौसम और जो बदलते देखो मौसम है तो वणी टाइम पे कीट रोग की भी आशंका वती दिखी रहे। तो अणी स्थिति में कहीं आप बचाव करता दिखे जब वे फसल करा और जो भी खेती बाड़ी करा तो वन में नुकसान की व्यवहार की आशंका रहे वणी ने आप कम कतरी कर सका यो अपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो फल उत्पादन की बात करें तो देखो सिंचित मूंगफली की बुआई जो आप करा तो वणी को सही टाइम जो है बाणो चल रही है जून को जो ये महीनों चल रहे हो इन टाइम पे आप करना चाहवा। और अणी महीना में देखो देखो अपने मिट्टी की जांच के आधार पर अंतिम जुताई पहली अपना प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम वो मिला होना चाहे। मूंगफली की खेत महीने देखो अपना प्रति हेक्टर 60 किलो फास्फोरस और 15 किलो नत्रजन, जन में देखो 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट वे सके और 35 किलो यूरिया वे सके। तो बुआई पहली जो है अपना नायला महीने और यो काम भी करना चाहे और फास्फेट तत्व की पूर्ति रे वास्ते अपना सिंगल सुपर फास्फेट जिन्हें SSP भी अपी कहवा वणी के माध्यम ज़्यादा फायदेमंद वे सके सा। ज्वार में तना मक्की कीट नियंत्रण का वास्ते अपने मानसून पहली मतलब वर्षा आवे की टाइम वे वणियों पहली जो है अपना वर्षा वेवा के एक सप्ताह के अंदर जो है

वही करनी चाहवे। और देरों बोई लकी जो भी फसल है वन में कार्बोफ्यूरोन 30% जो है कण 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दरों अपन उम्र और महीने डालन जो है बुआई करनी चाहवे। खरीफ फसल में खास तौर पे देखो दलहनी फसल जो है वन में कातरा को प्रयोग अपन करना चाहवे। कीट की लट वाली जो अवस्था है वणियों फसल ने नुकसान वत्तो पहुंचे तो अणी कीट के पतंगा जो है वणि नष्ट करवा वास्ते अपन प्रकाश पोष जो है वन को उपयोग करना चाहवे। अणी का वास्ते कही है कि वर्षा की टाइम पे शुद्धि शुरू वेरी वे तो अपने खेतर महीने मेड़ा का ऊपर या चरागाह पे देखो गैस की लालटेन या पचे बल्ब लगाना चाहवे। एक कही है कि नीचे 5% मिट्टी रो तेल बिना पी घास लेट भी कहवा विने पानी रा महीने मिलाइन कणी ठामड़ा रा महीने बर्तन रा महीने रख देनो चाहवे। एक कही है कि देखो प्रकाश पे कातरा का पतंगा जो है वह आकर्षित वही नावे और नीचे पड़े लोगों जो भी घास लेट है वने रा महीने पानी रा महीने गिरन मर जावे। कातरा की छोटी अवस्था रा महीने लट जो है वह अपना फसल में दिखाई देती दिखे अपने क्यूनालफोस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर जो है अपना फसल का महीने बुरकाव करना चाहवे। क्षारीय और लवणी मिट्टी में बोवारा पहली जो अपने बाजरा का बीज जो है 1% सोडियम सल्फाइड जो है वण का गोल मिलाइन 4 घंटा तक वण में भिगोन रखना चाहवे। साफ पानी धोईन जो पचे उन्हें छाया में सुखाई दा और पचे बीज ने कवक नाशी उपचारित अपी कारण बुआई करना चाहवा। आसान करना तो कही है कि उपचारित बीज जो है वो खारी मिट्टी में भी अंकुरण अच्छो बैठे। और देखो कि बाजरा में गुंदिया या फिर चेपा फसल जो है वन में बचाव वास्ते अपने बीज ने नमक का पानी रे महीने मतलब 20% घोल को अपना तैयार करना है जिनमें 1 किलो नमक और 5 लीटर पानी जो है वो मिलाई जो अण को काम में लेना है और अण में डुबोन रखना है और 5 मिनट तक करीब डूबोन रखा तो आप ही यो काम वही जावे। और तैरता दिखा हल्का बीज जो है या पचे कचरो बगदो है वो हट जाएगा और वच्चा दिखा जो बीज है वरना साफ पानी में धोई जो अच्छी प्रकारों आप ही छायादार जगह में सुखावना चाहवे और इसके बाद जो है बोवारो काम आप ही कर लेना चाहवा। मूंगफली में गलकट मतलब कोलर रोट नाम को जो रोग व्या करे अणियों मंचावर वास्ते बोयू पहले अपने प्रति किलो बीज जो है 3 ग्राम थायरम 75% WP या पचे 2 ग्राम मैनकोजेब उपचारित करना चाहवा। रासायनिक फफूंदी नाशी को कम उपयोग करना चाहवा और यो देखो कि अपना बीज जो है वन ने आपी काम में लेवा तो पचे इन में उपचारित करवो जरूरी व्या करें और वही हिसाब आपी काम में लेवा तो यो काम भी अच्छो तरह वे सके। क्षारी और लवणी मिट्टी में बोवारों पहले अपने बाजरा का बीज ने 1% सोडियम सल्फेट का गोल रमी ने 4 घंटा तक भिगोन साफ पानी धोना चाहवा और पचे छायादार जगह में सुखान बीज ने है कवक नाशी का रूप में उपचारित कर बुआई करना चाहवा। अशो अपी करना तो देखो उपचारित बीज जो है खारी मिट्टी में भी अंकुरण अच्छो बैठे और इकलारे देखो कि अपना आगे को काम अपी करना तो देखो कि मूंगफली का जो गलकट रोग है वणियों मंचावर वास्ते बुआई पहली प्रति किलो बीज जो है 3 ग्राम थायरम 75% WP या पचे 2 ग्राम मैनकोजेब उपचारित करना चाहवा। रासायनिक फफूंद नाशी को कम उपयोग करता दिखाई जापी देखो बीज ने क्रमशः थायरम 1.5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम और राइजोबियम कल्चर 3 पैकेट प्रति किलोग्राम बीज की दर जो है आप ना उपचारित कर बुआई करना चाहवा। इसका साथ ही देखो अपना बुआई पहले अपना ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दरों 500 किलोग्राम गोबर खाद जो है वह मिलाइन जमीन में मिलावान काम में लेना चाहवा। अणि इस तरह देखो बागवानी संबंधी आप काम कर रहे हैं तो नींबू वर्गी फलदार जो भी पौधा है वणी ने रोग और अन्य कारण मतलब जलवायु संबंधी जो भी कारण है वणी वंचावना चाहवा। तोड़ाई पहली जो है फल ने आप गिरवा की स्थिति वे या पचे तोड़ाई के बाद में आप फल जो है सड़वा की स्थिति में वे तो वणी वंचावर वास्ते कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी रे महीने या पचे प्रोपीनेब 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रे महीने या पचे जैव नियंत्रक यीस्ट जो व्या करे वणियों में आपी 10 CFU प्रति मिलीलीटर पानी रे महीने घोल मिलाइन 5 छिड़काव करना चाहवा। जे देखो छिड़काव व्या करे वे मार्च अप्रैल
अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीना आप करी सका। अप्रैल अगस्त और सितंबर महीना रा महीना देखो छिड़काव का वास्ते अपना प्रयोग किया जावे तो देखो गोल में जिब्रेलिक एसिड या पचे 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी रा महीना आनी एसिड ने मिलाई जो है गोल को छिड़काव अपने करना चाहे। बियर का काट छाट करा पी तो वणियों देखो कि नया प्रपोह जो है वन में अधिक संख्या रा महीने फूल और फल आई सके। काट्यादि का जो भी स्थान है

0: मैं फफूंदनाशी बॉर्डेक्स मिश्रण जो है वणी में आपकी लेप लगाई जो काम में लेना चाहवा। नींबू वर्गीय पौधा जो है वणी में कीटा में पर्ण सुरंग कीट जो व्या करे वणी का लार्वा बहुत छोटा व्या करे जो नींबू रे महीने पत्तिया की सतह का अंदर जो है टेढ़ी मेढ़ी सुरंग वणी देवे। चांदी का रंग का यदि दिखता दिखा चमकता दिखाई अपने दिखाई देवे और प्रभावित पत्तियां जो भी है वणा का किनारा के अंदर जो है वहीं की तरफ जो है मुड़ता दिखाई दिखाई देवे। जनियों की एक नई बढ़वार जो है बुरी तरह प्रभावित व्या करे और वर्षा की टेम यदि वे वणी टेम पर इनको प्रकोप ज़्यादा भी जावे तो अब इनको प्रभाव जो है नज़र आते देखो दिखे तो अपन क्यूनाल फोस 25 EC 2 ml प्रति लीटर पानी रे महीने मिलाई जेण को छिड़काव करना चाहे या तो भी जानकारी और अब कार्यक्रम जावारी टाइम भी तो चाला सा राम राम सा।
1: कार्यक्रम खेती में आज अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थे पंकज वैष्णव। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 kHz पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं, ये समय है सदाबहार नगमों का। सदाबहार नगमों में सबसे पहले आप सुनेंगे चिराग फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

मन्ना डे और उषा मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल की राह का ये खूबसूरत सा गीत। और अगला गीत हमने चुना है फिल्म संजोग सी, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

सदाबहार नगमों का लुत्फ आप उठा रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

0: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
0: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
0: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुड्ढू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

अर्थ फिल्म से अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। अगला गीत हमने चुना है आराधना फिल्म से, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है?
1: एक तो परदेस जा रहे हो, कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
0: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है?
1: छोड़ो।
0: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं परदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो।
1: बंद है।

अर्पण फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। सदाबहार नगमों की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म है चिराग।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल आवाज़ों में।

आशा भोसले की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी, सुगम संगीत की आखिरी प्रस्तुति जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल आवाज़ में।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

0: नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की

0: संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1 करोड़

0: गलतियां, विफलता, अनुभव, निराशा और दृढ़ता, ये सभी उन्नति और प्रगति का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन कठिनाइयों से गुजरे बिना जीवन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का आज का अंक लेकर हाजिर है हम। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त आंचल, और मेरे साथ है
1: मीनाक्षी। तो स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार।
1: और देखो आंचल, आज है ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे, तो मॉर्निंग ब्रीफ में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, निर्जला एकादशी की बात होगी ही, साथ ही स्थानीय खबरें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, और विश्व कप महिला T20 मैच में क्या रिजल्ट्स रहे कल के, और फीफा वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे। इको टॉक में सर्कुलर इकोनॉमी से पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे।
0: बिल्कुल। और ट्रेवल टॉक में आज हम शेयर करेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जरगा जी की, और साथ ही अवेयरनेस सेगमेंट में बताएंगे आज के दिन का इतिहास।
1: तो पहले एक गीत।

0: वैसे आंचल देखो मौसम तो सफर का तभी बनता है जब मौसम सुहाना होता है, लेकिन अगर अभी बात करें तो बहुत गर्मी और बुधवार का दिन तो बेहद गर्म रहा। शाम को बादलों की आवाजाही से भी कोई राहत नहीं मिली और अधिकतम तापमान में बढ़त देखी गई, न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई और आने वाले दिनों में मौसम यूं ही बने रहने के आसार हैं। लेकिन और खबरों की तरफ नजर डालें।
1: बिल्कुल, अब स्थानीय खबरों पर अगर नजर डालते हैं तो एक खबर है, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत राज्य सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर खरीदी जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं को सीधे मरीजों को नहीं बांटा जा सकेगा। वितरण से पहले इनका लैब टेस्ट कराना होगा और लैब से गुणवत्ता रिपोर्ट आने तक इन दवाओं को क्वारंटाइन स्टॉक में रखा जाएगा।
0: बिल्कुल, दाऊदी बोहरा समुदाय ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में यौम आशूरा मनाया और इस अवसर पर समाज द्वारा मातमी जुलूस भी निकाला गया। वैसे आंचल मुहर्रम अकीदत और पारंपरिक तरीके से मनाया जाने वाला शहादत का मौका है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छड़ियों का जुलूस, मजलिस और ताजी निकाले जाते हैं और मस्जिदों इमामबाड़ों में विशेष दुआओं का दौर चलता है। आज रात भड़भूजा घाटी में छड़ी मिलन की रस्म होगी और इसके साथ कल जो है बुधवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए उदयपुर जिले की ऑनलाइन लॉटरी अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निकाली गई और इस माध्यम से कुल 1989 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया, जिनमें 1772 यात्री रेल मार्ग से और 217 हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। मुख्य सूची में यदि कोई चयनित यात्री यात्रा नहीं कर पाता किसी कारणवश तो प्रतीक्षा सूची से उसका स्थान भरा जाएगा।
1: बिल्कुल, और आज के दिन विशेष की अगर बात करें तो आज है निर्जला एकादशी, जो हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और निर्जल व्रत रखते हैं और कहा जाता है इस एक व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है।
0: बिल्कुल, आजकल स्वस्थ शरीर के लिए योग जरूरी है, स्वस्थ मस्तिष्क और मन के लिए संगीत और हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतों का महत्व समझाती है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, जैसे जल की उपयोगिता से जुड़ा है आज का यह खास पवित्र दिन यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी। और देखो, चूंकि महाभारत काल में भीम ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर एकमात्र इसी कठोर उपवास को किया था, क्योंकि पता ही है कि वो उन्हें भोजन कितना प्रिय था, तो महाभारत काल में ये जो व्रत उन्होंने किया तब से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। और जहां गुजरात और कई शहरों में, जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाने के लिए प्रसिद्ध है,

0: है ना। वही मेवाड़ की परंपरा है निर्जला एकादशी पर पतंग उड़ाने की, और आज तो बच्चे बड़े महिलाएं पुरुष सभी नजर आते हैं घर की छतों पर पतंगबाजी करते हुए।
1: बिल्कुल, हमारे शहर की अगर बात करें तो निर्जला एकादशी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने बताया कि गुरुवार को अपनी टीम के साथ 5:30 बजे से राजीव गांधी पार्क के सामने फतेह सागर के सूखे पेटे में पतंगबाजी से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस बार वह अपनी पतंगों से विशेष तिरंगा काइट ट्रेन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात काइट फेस्टिवल में उड़ाई, उसका प्रदर्शन करेंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर, जय मेवाड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश देने वाली पतंगों का प्रदर्शन करेंगे।
0: बिल्कुल, और आज शहर के श्रीनाथ जी मंदिर, जगदीश मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। पंचामृत स्नान कराकर केसरिया वस्त्र प्रभु को धराए जाएंगे, उनके समक्ष जलपात्र भरकर फव्वारा भी चलाया जाता है और पानी से भरी मटकियां मंदिरों में पधराई जाती हैं। पंखे और मौसमी फल जो हैं वो भी दान पुण्य करने का आज के दिन का विशेष महत्व रहता है। विशेष आरती भी होती है और देखो इस दिन जो विशेष एक आयोजन के तहत व्यवस्थाएं भी अलग होती हैं।
1: बिल्कुल, आज के दिन जगदीश मंदिर की अगर बात करें तो जगदीश मंदिर में हजारों भक्त ठाकुर जी दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए, छाया के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही मंदिर की परिक्रमा में कारपेट भी बिछाए गए ताकि भक्तों के पैर नहीं जले।

0: बच्चे कहाँ हैं?
1: बिल्कुल, अब स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ चलते हैं आंचल। तो 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण के रोमांचक मुकाबले जारी हैं। 48 टीम्स कुल 104 मैचेस खेलेगी 12 ग्रुप्स में, और भारतीय समय के अनुसार सुबह 12:30 से ग्रुप्स के दो दो मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें पहले ग्रुप बी के, फिर 3:30 पर ग्रुप सी और 6:30 पर ग्रुप ए के दो दो मैच हुए। तो ग्रुप बी के मैच की बात करें, स्विट्जरलैंड ने 2-1 से जीता मैच और कनाडा से ये मैच जीता उन्होंने। 7 अंकों के साथ ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, और वैसे कनाडा भी अंतिम 32 में पहुंच गई है। दूसरा मैच जो हुआ वो बोस्निया और हर्जेगोविना कतर के बीच में हुआ, और बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने सिएटल में कतर को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। टीम का प्रदर्शन दमदार रहा और 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी करीम अलेज बेकोविक का अब जो है मुख्य केंद्र बन गए अपने खेल से। ये मुकाबला वास्तव में एक नॉकआउट मैच की तरह रहा, क्योंकि दोनों टीम जानती थी कि हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना है। इसके बाद ग्रुप सी के जो मुकाबले हुए उसमें एक मैच में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से और दूसरे में मोरक्को ने हैती को 4-2 से शिकस्त दी।

0: ग्रुप ए के मैचेस की बात करें तो साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया में साउथ अफ्रीका जीती एक गोल करके, साउथ कोरिया अपना खाता नहीं खोल पाई। और दूसरा जो मैच रहा वो चेकिया और मैक्सिको के बीच में रहा। चेकिया कोई भी गोल नहीं दाग सकी जबकि मैक्सिको ने 3 गोल किए।
1: तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अब हम चर्चा करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप कल के मुकाबले की। तो 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए पाकिस्तान को कल 113 रन से करारी शिकस्त दी। यह टूर्नामेंट में किसी टीम की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 199 रन का स्कोर बनाया और अनुभवी बैटर एलिस पेरी ने 48 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 71 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 13 ओवर और 4 बॉल में 86 रन पर ऑल आउट हो गया। इस निराशाजनक प्रदर्शन के चलते टीम को लगातार चौथी हार झेलनी पड़ी और यह टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
0: तो बड़े ही रोचक मुकाबले चल रहे हैं और आज एक और खास दिन है आंचल।
1: आज के

0: तो 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए पाकिस्तान को कल 113 रन से करारी शिकस्त दी। यह टूर्नामेंट में किसी टीम की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 199 रन का स्कोर बनाया और अनुभवी बैटर एलिस पेरी ने 48 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 71 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 13 ओवर और 4 बॉल में 86 रन पर ऑल आउट हो गया। इस निराशाजनक प्रदर्शन के चलते टीम को लगातार चौथी हार झेलनी पड़ी और यह टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
1: तो बड़े ही रोचक मुकाबले चल रहे हैं और आज एक और खास दिन है आंचल।
0: आज के दिन विशेष की बात करें तो आज यानी 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर नाविकों को समर्पित है जो समुद्र की अथाह गहराइयों और कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे जीवन को सुचारू बनाते हैं। मीनाक्षी, क्या आप जानती, दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। इसका मतलब है कि हमारे रूटीन की कई उपयोगी वस्तुएं, चाहे वे कपड़े हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो या खाद्य पदार्थ, नाविकों की मेहनत से ही हम तक पहुंचती हैं। यह दिन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2010 में शुरू किया गया था और इसे यूनाइटेड नेशन का समर्थन प्राप्त है।
1: बिल्कुल, ये नाविक यानी समुद्री यात्री, इनकी जिंदगी आसान नहीं होती है आंचल। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर और परिवार से लंबे समय तक दूर रहते हैं, खतरनाक मौसमी परिस्थितियों का सामना करते हैं, कुछ क्षेत्रों में डकैती का खतरा भी होता है और कठिन कामकाज की स्थितियां होती हैं। नाविक वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करते हैं कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, वे सामान और ईंधन उपलब्ध कराएं जिन पर हम निर्भर हैं। नाविक वास्तव में वैश्विक व्यापार के पीछे छुपे नायक हैं आंचल, और बंदरगाहों पर नाविकों के साथ उचित व्यवहार का आह्वान करता है। ये दिन उन मुद्दों पर भी ध्यान देता है जो नाविकों के काम और जीवन को प्रभावित करते हैं, और इस साल की जो थीम है वो है विश्व व्यापार का संचालन, जोखिमों का वहन।
0: अंत में यही कहेंगे, जो लहरों से डरकर नौका पार नहीं करते वो कभी मंजिल के हकदार नहीं बनते।

0: मीनाक्षी कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। अब बात करें कार्यक्रम में तो आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों की कमी और कचरे की बढ़ती समस्या आज हम सबके सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में सर्कुलर इकोनॉमी एक प्रभावी समाधान के रूप में हमारे सामने आया है। तो आज के ग्रीन एंड गेटवे थर्सडे के इको टॉक में आज हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी से पर्यावरण संरक्षण की।
1: सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी इसमें उत्पादों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे लंबे समय तक उपयोगी रहें और बाद में उनका पुनः उपयोग किया जा सके। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संसाधनों को बार बार उपयोग में लाया जाता है और कचरे को कम किया जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम प्लास्टिक, कागज या धातु को रिसाइकल करते हैं, पुराने सामान को दोबारा यूज में लेते हैं या ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाते हैं। इससे न केवल कचरा कम होता है, साथ ही ये प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में सर्कुलर इकोनॉमी का रोल हमारे श्रोता समझ ही गए होंगे। सर्कुलर इकोनॉमी कचरे को कम करके प्रदूषण घटाती है। रीयूज यानी बार बार उपयोग करने से नए संसाधनों की जरूरत हमें कम होती है, तो इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। रिसाइकिल से ऊर्जा की खपत कम होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने में भी मदद मिलती है।
1: सर्कुलर इकोनॉमी की चुनौतियां भी हैं। देखो आंचल, जागरूकता की कमी और रिसाइकलिंग सुविधाओं का अभाव, इसलिए हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी इसके लिए और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। संसाधनों का सही उपयोग ही पर्यावरण संरक्षण का सच्चा संरक्षण है और सर्कुलर इकोनॉमी पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत और टिकाऊ उपाय है। इसके लिए हम सभी छोटे छोटे प्रयास करके हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकेंगे।

0: और ये हवाएं गुनगुना के बता रही हैं कि आज के दिन का इतिहास क्या कहता है। तो 25 जून है आज का दिन, और देखो 1975 गए आपातकाल की बरसी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि देश में आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। यह दिन उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने आपातकाल के दौरान यातनाएं सही और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। साथ ही 2005 में अहमदी नेजान ईरान के राष्ट्रपति बने, और 2017 में क्रिकेटर श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था।
1: और बात करें आज जन्मे विशेष व्यक्तियों की, तो वर्ष 1900 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय थे, इनका जन्म आज ही हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक चंद्रशेखर पांडे का जन्म भी वर्ष 1903 में आज ही के दिन हुआ। बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन का जन्म भी आज यानी वर्ष 1924 में हुआ था। और 1975 की अगर बात करें तो मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक है, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक सुधा सिंह वर्ष 1986 में इसी दिन जन्मी थी। और भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश झा का जन्म भी वर्ष 1961 में आज ही के दिन हुआ था।
0: बिल्कुल, और गोवा की स्वतंत्रता के स्वतंत्रता सेनानी मोहन रानाडे ने आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर भी आज के दिन हमें अलविदा कह गए थे साल 2009 में। और स्वामी हजनानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, 1950 में इनका निधन हुआ। तो ये आज के इतिहास से जुड़ी बातें।

राजधानी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 4 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देशभर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न

0: विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ. मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: पांचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। माके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड के 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
2: प्रातःकाल से ही श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की

0: पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल निगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में,
3: और मेरे साथ आंचल है और मैं मीनाक्षी। और आंचल, अब सबसे पहले इकबाल हुसैन इकबाल द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ सुनते हैं।
4: गजल का मतलब समझ फरमाएं। शायरी में पुख्तगी गर चाहिए, शायरी में पुख्तगी गर चाहिए, सिर्फ अशकों का समंदर चाहिए। और इस जहां को सच सुनाना हो अगर, इस जहां को सच सुनाना हो अगर, हाथ में हर वक्त पत्थर चाहिए। हौसलों को आजमाने के लिए दुश्मनों के सामने घर चाहिए। सुधर जाएगा बिगड़ा निज़ाम सारा, बस हथेली पर रखा सर चाहिए। और गीत गज़लें दें पयाम खुशरवी, गीत गज़लें दें पयाम खुशरवी, महफिलों को वो सुखनवर चाहिए। और हम नवाई हमने खूब देख ली, हम नवाई हमने खूब देख ली, यार अब कोई सितमगर चाहिए, यार अब कोई सितमगर चाहिए। गज़ल का मतलब समाज फरमाएं।

चली है चलेंगी सियासी हवाएं, चली है चलेंगी सियासी हवाएं, किसी को छले तो किसी को फले हैं।

यही सिलसिले तो अजल से पले हैं, और कमा कर भी हर दिन रहे हाथ खाली, कमा कर भी हर दिन रहे हाथ खाली, वहीं पर खड़े हैं जहां से चले हैं, वहीं पर खड़े हैं जहां से चले हैं। और मुक्ता स्वामी फरमाए, कभी लोग इकबाल तुझ से कहेंगे, तेरे शेर सारे तड़प में ढले हैं, तेरे शेर सारे तड़प में ढले हैं। और गजल का मतलब समाप्त फरमाए, बदला हुआ समा है, बदले हुए नजारे, बदला हुआ समा है, बद

फिर देखिए, कल तक जो यार हम पे दिलो जान से फिदा थे, कल तक जो यार हम पे दिलो जान

चल देखिए, थे साथ जब तलक वो हमने

0: और अब हम यात्रा संवाद में दर्शन करेंगे जरगा जी के। धन दौलत ना चाहिए ना चाहिए घर बार, केवल जरगा नाम हो अलख का आधार। ये स्थान मेघवा समाज के महान संत जरगा जी की तपोभूमि है, जिनका जन्म आज से लगभग 600 से 700 वर्ष पूर्व हुआ था। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर अलख धणी की भक्ति और उनकी तपस्या का मार्ग अपनाया। जरगा जी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के एक पूजनीय लोक देवता हैं, जिन्हें जरगारा धणी के नाम से भी जाना जाता है। इनका इतिहास लोक कथाओं में बाबा रामदेव जी से जुड़ा हुआ माना जाता है। कथाओं के अनुसार जरगा जी रुणेचा के संत बाबा रामदेव जी के परम भक्त थे। जनश्रुतियों में कहा जाता है आंचल कि जब रामदेव जी ने समाधि ली, तब जरगा जी उनके घोड़े लीले की सेवा में लीन रहे। वे 12 वर्ष तक उसी अवस्था में कठोर तपस्या में बैठे रहे, जिससे उनका शरीर कंकाल के समान हो गया। उनकी अटूट भक्ति देखकर बाबा रामदेव जी ने उन्हें पुनः दर्शन देकर जीवित और स्वस्थ किया। उनके इस अपार समर्पण को देख अलख धणी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब जरगा जी ने उत्तर दिया, धोम धणियों री नाम जगरारो, यानी यह धाम अलख धणी आपका रहे और नाम मेरा रहे। और तब अलख भगवान ने कहा कि आज से मेरे नाम से आगे तेरा नाम आएगा, और इसी आशीर्वाद के बाद वे जरगारा धणी कहलाए। तब से बाबा का नाम लेने से पहले जरगा जी का नाम लिया जाने लगा।
1: बिल्कुल, जरगा जी का मुख्य धाम उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील में अरावली पर्वतमाला की हरी भरी वादियों और जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जरगा अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में से एक, लगभग 1431 मीटर ऊंची है, जो मुख्य रूप से उदयपुर और राजसमंद के बीच फैली हुई है। इस पवित्र स्थान पर भक्तराज जरगा जी की जीवित समाधि बनी हुई, साथ ही रामदेव जी और महादेव जी के भी मंदिर यहाँ बने हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। जरगा जी के स्थान पर हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष रूप से आयोजन होते हैं। ढालो पाली जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से संत और श्रद्धालु लगभग 54 किलोमीटर पैदल चलकर महाशिवरात्रि के दिन जरगा जी पहुँचते हैं। लोक संगीत और कथाओं के माध्यम से मेवाड़ में जरगा जी की महिमा और इतिहास का गुणगान किया जाता है। इतिहास के अनुसार महाराणा मोकल को जरगा जी की समाधि पर संतों के आशीर्वाद से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कलश यानी कुंभ के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण बालक का नाम कुंभा रखा गया। आगे चलकर महाराणा कुंभा ने ही यहां पाषाण की भव्य छतरी का निर्माण करवाया।
0: श्री राघुपीर यानी रघुनाथ पीर राजस्थान के उन महान संतों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति और चमत्कारों से समाज में अहिंसा और धर्म की स्थापना की। राघुपीर एक माह की शुक्ल बीज को भजन करने जरगा जी नया स्थान धाम आते थे, और एक बार जरगाजी पर्वत पर संतों ने उनकी परीक्षा ली। संतों ने एक सूखे आम के पेड़ को हरा करने की चुनौती दी। रघुपीर ने अपनी भक्ति के बल पर उस सूखे पेड़ को तुरंत हरा भरा कर दिया। उस स्थान पर बलि दी जाती थी। रघुपीर ने भी अपनी शक्ति से चमत्कार दिखाया, और तब से वहां बलि प्रथा समाप्त हो गई। उन्होंने मदिरा को दूध बना दिया और उसका पंचामृत बनाकर संतों को पिलाया। संतों के हाथ धोने के लिए उन्होंने आह्वान करके गंगा प्रकट करवा दी। वहां गंगा कुंड से 16 कलश भरे गए। एक कलश जरगाजी की समाधि पर रखा गया और बाकी 15 कलशों के से सप्त धान यानी 7 अनाज पकाकर प्रसाद बनाया गया।
1: आज भी जरगा जी के मेले की रात गंगा वेरी से कलश भरने की परंपरा है, जो भविष्य का संकेत देती है। यदि पूरे 16 कलश भर जाते हैं तो अच्छी बारिश होती है, और कलश खाली रहने का यानी कम बारिश का संकेत है। सप्त धान में से जो अनाज सबसे ज़्यादा पकता है उसकी फसल उस वर्ष खराब होने का भय रहता है, और जो ठीक पकता है वह फसल अच्छी होने का संकेत है।
0: यहाँ पर हर साल फागुन बदी 14 के दिन मेला भरता है। और राघुपीर जी ने ढालोप में जीवित समाधि ली थी। जिस आम के पेड़ को उन्होंने हरा किया वो संवत 2008 में गिर गया, और इसके पश्चात वैशाख सुखी सुदी सप्तमी बुधवार संवत 2012 को वहाँ रघुपीर जी की छतरी बनवाई गई, जहाँ आज से ढालोप से आने वाली सेवा विराजित होती है।

0: और इसी भक्ति रस के साथ ही अनुमति लेते हैं आज के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर से। तो श्रोताओं, आज मैं थी मीनाक्षी
1: और मैं आंचल,
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा

0: में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।

0: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
0: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
2: जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में

0: करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं

0: पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
0: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
0: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधु कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके

0: अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
0: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं शीर्षक संगीत, और आज का शीर्षक है रूठना।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग। NCERT द्वारा

रूठ जाना भी एक अदा है प्यार की और मनाना उस अदा की इबादत। आज का शीर्षक संगीत समर्पित है रूठने को और शीर्षक संगीत के इस सफर में आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त आंचल। तो एंजॉय करते हैं शीर्षक संगीत का ये पहला गीत फिल्म देवर से, आवाज लता मंगेशकर की।

सूर उठे तो लगे जैसे सब कुछ अधूरा है, तू मान जाए तो हर लम्हा फिर से पूरा है। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

0: चलिए हाथ फैलाइए।
1: ये मिठाई किस खुशी में?
0: मिठाई नहीं, प्रसाद है।
1: हलवाई की दुकान पर मिठाई कहलाती और यहाँ आके प्रसाद बन गई?
0: आप खा तो लीजिए।
1: मिठाई तो बच्चे खाते हैं।
0: इसीलिए तो दे रही हूँ।
1: तो क्या मैं बच्चा हूँ?
0: हरकत तो ऐसी ही है।
1: इसलिए बच्चा हूँ कि बेजान मूर्तियों को नहीं मानता। राधा जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक जहालत के अंधेरे में जकड़े हुए हैं।
0: जो खुद को बहुत एडवांस समझते थे, आज वो भी शांति की तलाश में है, पीछे की तरफ लौट रहे हैं। और आप देवताओं की धरती पर जन्म लेकर भी बेगाने हैं।
1: मैं अपना भगवान आप हूँ। मेरे भगवान ये दो हाथ हैं जो मुझे रोटी देते हैं।
0: लेकिन इन हाथों को बनाने वाला भी तो कोई होगा।
1: मेरे माँ बाप थे।
0: जवाब अधूरा है। आगे बढ़ते बढ़ते आप दुनिया के सबसे पहले इंसान तक पहुंच जाएंगे और फिर आपको किसी न किसी शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा।

0: तो फिर आज क्यों नहीं? कुछ मांग कर देखिए मिलता है या नहीं।
1: मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या ये नहीं हो सकता कि आप मेरे लिए अपनी जैसी एक हसीन लड़की मांग लें अपने भगवान से?
2: आपने जवाब नहीं दिया।

नाराजगी भी बड़ी प्यारी सी लगती है जब हर बार तू मनाने आ जाता है। अगला गीत जतिन की आवाज़ में फिल्म है जो जीता वो ही सिकंदर।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: शीर्षक संगीत आप सुन रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। शीर्षक संगीत में हमारा आज का विषय है रूठना। तो रूठना अगर आपकी आदत है तो मनाना हमारा कर्तव्य। आप हजार बार रूठोगे और हम लाख बार मनाएंगे।
1: तो अब तक आप कितनी लड़कियों की तारीफ कर चुके हैं?
2: मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की की तारीफ की है, पहली और आखिरी बार।
1: कौन है वो?
2: वो है जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं।
1: मगर वो है कौन?
2: है एक हसीन नाजनीन महाजबीन गुलबदन शोलाबदन चांद सी उजली किरण।
1: ये लड़की का नाम है या हसरत जयपुरी के गानों के मुखड़े?
2: नाम कैसे बता सकता हूँ उसका?
1: ना बताओ, मुझे सुनना भी नहीं है। आप यहाँ बैठकर शायरी फरमाइए, मैं जा रही हूँ।
2: नीता सुनो तो सही, लाख बार काहे को रूठा ना करो। नीता नीता

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी

0: एलर्जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

रूठना मत कभी, हमें मनाना नहीं आता, दूर नहीं जाना हमें बुलाना नहीं आता, आप भूल जाओ हमें, यह आपकी मर्जी है, हम क्या करें, हमें बुलाना नहीं आता।

पूर्व केंद्र से जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज का हमारा शीर्षक है रूठना, तो सुनते हैं अगला नगमा।

आरजू फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। रूठने का हक भी उसी को होता है जो मनाने की कला जानता हो। दोस्तों आज का शीर्षक संगीत समर्पित था शब्द रूठने को। तो ज़्यादा किसी से हमें रूठना नहीं है, जल्दी से मना लेना है और जो रूठा है उसको मनाना भी है। तो आज के कार्यक्रम शीर्षक संगीत से दीजिए इजाज़त। आपकी रेडियो दोस्त आंचल को नमस्कार।

फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रामकृष्ण बोस की राग गुर्जरी तोड़ी। आइए अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति, पहले ये संदेश।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे राग अहिर भैरव, डॉक्टर गंगूबाई हंगल की ये रचना। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम।

सुगम संगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर है हम। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, आवाज है मेहदी हसन की।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

पंकज उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल अभी हमने सुनी। आइए सुनते हैं अगली गज़ल चंदन दास की मधुर स्वर में।

चंदन दास की आवाज़ में यादें लेकर नई पुरानी कागज़ पर बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी हमने सुनी। सचमुच यादें बेहद ही खूबसूरत होती है, कुछ कागज़ पर पिरोई हुई, कुछ दिल में संजोई हुई। आइए सुनते हैं अगली गज़ल।

सुगम संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम।

हम प्यार शब्द के मतलब को कितना भी समझने की कोशिश क्यों न कर लें, फिर भी हम इसे पूरी तरह से समझ

नहीं पाते। इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है किसी से अपने दिल की बात को कहना। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए बेहतरीन नगमे, दिल को छू लेने वाले।